मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहिन पाग्यो। ए चिंता उपजी काट में है, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस में है पाग्यो।

मित्र कुटुंब तान पावन मामा ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तान रहण वास्ते सोने पावन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तान दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी समग्री है कृपा करतास खालसे ने मेरे ते कृपा करके ये सब कुछ मैनू दिता। सत्संग तन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज है ने गुरु नानक दा रूप पर जे निम्रता वल जाइए ते कित्थे तक जा पहुंचे ने कि सारा कुछ खालसे ने कृपा करके मैनू दिता है। कवि सुंदरदास जेड़े आनंदपुर साहब रहा करते सन वो कहंदा मैं आनंदपुर साहब रह के देखे है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार कि जिन्हां राजिया महाराजिया मिलना बड़ा औखा है, जिन्हां राजिया महाराजिया की एक झलक देखनी बड़ी औखी है, उन्हां राजिया महाराजिया मैं गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार ते दरबान बन के पहरेदार बन के खलोते देखे है। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिदे दर ते वड्डे वड्डे राजे महाराजे आके झुकदे ने, ओ गुरु इतनी निम्रता, इस निम्रता विच आके कह रहे ने कि ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तान रहने वास्ते घर सब कुछ खालसे ने कृपा

कला नाम करके खालसा नहीं, जिन्हें आत्म रस नु जान लिया ओहो ही खालसा है। सिर्फ नाम दे नाल खालसा नहीं, आप जिन मर्जी कह देने आओ खालसा जी, कई अपने नाम दे नाल भी खालसा लगा लें दे।

तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह वसाला। तरों तरा तरपन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा। जा मैं अमृत नाम है ज्ञान भक्त वैराग।

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता वख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही पर दूर। साध की शोभा का नहीं आन, साध की शोभा सदा। सतगुरु जुगो जुग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पवित्र गोद विच ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तपस्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई अपनी हाजरियां लगवाउण दे लई सत्संग हरी जस कीर्तन दा लाभ उठाउण दे लई आए हो वडभागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनिया बना रहे हो, सचमुच इन्हां घड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी वाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रहियां हन। साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जिया दे 300 साल दिहाड़े संगतां मना रहियां हन। ये कितने दिहाड़े कट्ठे होए हन। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, बड़भागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत। इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहेगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हन, परंतु सात संगत उसकी कुदरत कायनात का अंत नहीं किसी नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखते हैं, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफति का भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडा का मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें एक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसी भी सास पवित्र लफ्ज ना उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि वह बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो सतनाम। परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाना, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन किया, बड़ी महिमा वर्णन की है। आओ ऐसे ही महापुरशां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। वज वज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखमनी साहिब दे विच वर्णन करदे हन। असीं लोक ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असीं किन्ने नीवें चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच परम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेकां तरां दे दुखां सुखां दे विच फसे होए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए होए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेडे परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए और सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूल नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखमनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हों देवत्या दे सर्वोत्तम मने गए हैं। जा रहे हैं किसी जंगल के रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूड़ चक चक के मत्थे ना ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती से नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हों लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पूछती है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो। भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: यह धरती का कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती की यह समर्था है कि पवित्रता बख्श सकती है। ब्रह्मज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषों का जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साढ़े लोगों वास्ते। भावें संसारक तौर पर महापुरुषों के जीवन नू कोई सास उस दा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असी अपनी बोली दे विच ओ विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरश जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सास संगत जिन्हां दे नां तों सारे लोग जानदे हन, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान साध संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह साध संगत संत बाबा नंद सिंह तो उपरंत ते साध संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं साध संगत सुनांदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी साध संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओ डेरे दे विच होके जांदे, मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी विरध अवस्था विच पहुंचे हुए सन, परंतु एक दिन उन्होंने यह कहना कीता कि भाई गुरमुख सिंह, अज साडे कोल टाइम नहीं है, अज असीं जल्दी जाना है, साडे कोल बड़ा थोड़ा वक्त है, असी जल्दी जाना है, जल पानी छकन दा चाह पानी छकन दा सानू ना मजबूर ना करो, साडे कोल टाइम नहीं है, गड्डी दे विच बैठे बैठे ही बस जो कोई गलबात करनी है कर लो। ते गड्डी दे विच बैठे बैठे भाई वीर सिंह जी उन्होंने कहना कीता, भाई गुरमुख सिंह जी, साडे कोल टाइम तो नहीं है, परंतु असी चाहते हां कि असी बाबा हरदित सिंह उन्हां दे इस ते असी नमस्कार कर लिए, एक बारी गुरु साहब नूं मत्था टेक लिए। संत गुरमुख सिंह जी हाथ जोड़ के कहंदे ने, जिवें आप जी दी मर्जी होवे। भाई वीर सिंह जी गड्डी तों उतरे, महापुरशां दे पवित्र स्थान ते नमस्कार करन लगे, मत्था टेकन लगे। असी लोग मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, भाई हुण मत्था टेकिया, सारिआं ने जल्दी नाल मत्था टेक के खड़े हो गए, ते बहुत इन्हे तो मत्था लाया भी नहीं, जे किसी ने लाया तो थोड़ा जा मत्था ला के बस चुक लिया। भाई वीर सिंह जी ने मस्तक लाया, मत्था लाया, सारे उठ के खड़े हो गए, परंतु भाई वीर सिंह उन्होंने मस्तक नहीं चुकया। पांच मिनट निकल गए, सारे देख रहे हैं, दस मिनट निकल गए, पंद्रह मिनट निकल गए, बीस मिनट निकल गए, पच्ची मिनट निकल गए। बोलो
1: सतनाम,
0: इतने मिनट नमस्कार, इन्नी लंबी नमस्कार, इतना वड्डा मत्था टेकना, नमस्कार करनी, ते साध संगत संत गुरमुख सिंह ने कहंदे, असीं सोचदे हां भई 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह के भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी एक बारी होर मत्था टेक लिए, बोलो सतनाम। टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा एक बारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपकी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया, बोलो सतनाम। संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच एक ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहिंदे पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले तां तुसीं कहिंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असीं बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, नाले तुसीं मत्था टेकदे नमस्कार करदे 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दुबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे हो साडे कोल टाइम नहीं है, बोलो सतनाम। भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर का भजन होया है, असी तो अपने आप नू नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी, बोलो सतनाम। जिमें बैटरी डाउन हो जाती है कम करदी करदी, फिर उस नू चार्ज करने की लोड़ पैंदी है। कहंदे ऐसे तरह असी तो मत्था टेक के असी अपने आप नू चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो साध संग जिथे वाहिगुरू का भजन, वाहिगुरू का सिमन, किसी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे, सो शिव जी भगवान कहंदे हे पार्वती इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असीं एवें नहीं कहंदे, इथे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तां है नहीं, जिथे असीं मत्था टेकदे हो ए धूड़ चक के मत्थे नाल ला रहे हो। कहंदे इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, किसी ने परमात्मा की याद विच लीन हो के ओदा भजन कीता है, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इसे करके गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे फिर पढ़ो,

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दा जीवन बड़ा अद्भुत है, सात संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हां दी शरण दे विच इतनी तपस्या कीती, इतनी भगती कीती जो अखरां द्वारा वर्णन नहीं कीती जा सकती। बोलो
1: सतनाम।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चां दे जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं एसी गुरमुख की कठाली विच ढा लिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी का सी। हुण सास सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे सन। गुरु नानक साहब जाके साधुआं कोल बैठा करदे, भाई फकीरां कोल बैठदे। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते साध संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर साध सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तां इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया? उह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत उह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड्ड जांदा है, पिता जी कोल छड्ड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री अकाल।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए? कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड्ड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह? कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है? की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ? कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए? पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह। बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजा प्यारियां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनूं पंजा प्यारे ने नाम दी दात दत्ती है, ते नाले कहा जो तेनू ये गुरमंत्र दत्ता है, मूल मंत्र दत्ता है, नाम दत्ता है, इसनू स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इनू भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नू कदे नहीं छड्डना। ये नाम दी दात गुरु तो जो मिलती है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजों कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन, लत्तां भी साध संग कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव, जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुण पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालक नूं अपनी चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालक नूं अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका इह तां बालकी है भाई, इह तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालक च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां वही अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਹਸ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਭੇਸ ਧਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਨੋਗੇ? ਹਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतिया। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती की सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़ वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनू भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नू भी, दस तू की गुनाह किया सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सास सिंह चौबी चौबी घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़िया दे पौन ते सुट दिंदे सी, ना कहंदे। चौबी चौबी घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उस तरह ही हुक्म दे च पए रहिंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सास संग लेल दे विच सास संगत पा के गोले चलाउंदे, सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सास संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सास संगत उफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाट घट रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरश ने, इस करके सी नी। सास संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो इतना हुक्म

परम सम्मानयोग गुरु साहिब जी का परम पवित्र मुकद्दस पुनीत आपा गुरु साहिब सिंह जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। शब्द भंडार बहरे जखार धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र अमोलिक खजाने विचों आसा की वाग दे शब्दां श्लोकां पौड़ियां द्वारा अथवा कुछ शब्दां द्वारा सतगुरां दी दात शिक्षा प्राप्त हुई है। अंतला शब्द जो आपके दे सामने गायन किया जा रहा है आसा अते पहाड़ी आदि के अलापा अंदर स्वरा अंदर ते सप्तकां अंदर इसकी बेसिक लाइन इसका बेसिक आइडिया सेंट्रल आइडिया गुरु महाराज जी पुनः पुनः फरमाते हैं ताकि साडे मन अंदर वस जाए टिक जाए। गुरसिख हर बोलो मेरे भाई हे गुरु के प्यारियो सर्वव्यापी सर्वशक्तिवान ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट जो अलमाइटी फादर है

सर्वशक्तिवान हर समय हर जगह व्यापक है ते समूह कुवतां शक्तियां दा मालिक है। उसका चिंतन करो, उसकी आराधना करो। गुरसिख हर बोलो मेरे भाई अगे इकरार है, वायदा है, फल की मिलेगा, प्राप्ति की होवेगी, मुआवजे अंदर रिवार्ड इवजाना की मिलेगा। गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोल सब पाप लह जाए। कई बार मनुख ना चाहता होया भी पाप कर जाता है, अकारण ही किसी नाल शदीद ख्यालातां दा टकराव हो जाता है, अकारण ही किसी नाल विरोधता हो जाती है। ना चाहते होया भी कई कुछ इत हो जाता है। कौन चाहता है मेरे स्वच्छ ते कीमती लिबास उत्ते गर्द पवे, कालस लगे, पर फिर भी लग जाती, नादिया नादिया आलूदगी हो जाती है। मैं नहीं ना चाहते होया लैण देण विच वर्तारिया अंदर कई बारी तलख कलामिया अचेत गल्लां हो जांदियां ने, ते हौली हौली सूक्ष्म मैल लगती लगती भी कसाफत गलाजत दा रूप धार जांदी है ते डूंगी हो जांदी है। इस लई सतगुरां ने आपके पावन फरमाना द्वारा फरमाया है, नर अचेत पाप ते डर जो तू उचेचे तौर ते ढा के अटेंशनली नहीं भी कर दो, ऐसे हो जाण वाले पापा तो भी तू सुचेत रह, बेदार रह, बच के रह। नर अचेत पाप ते डर। तो गुरु साहिब जी ने ऐसा भी फरमाया है कि जे बिलफर्ज ना चाहद्या चाहद्या भी एक साफत गलाजत मैल लगती जावे, ता भी आशावादी गुरु ने सानू रहबरी बख्शद्या होया शाहकार कलाम अंदर फरमान किया है, पर यह मत पापा के संग हुण तू बेहिस बेहरकत बेउदमा ना हो, तेरी ना ढा दे कि मैं पापी हो गया हां। ते देख किवें आशावादी सतगुरु मेहरामत करते ने, पर यह मत पापा के संग पहले मिसाल दिती है, मूत पलीती कपड़ हुए अगे ढंग दस्या, दे साबून दे मैंने लगाना, दे साबून उस पलीत कपड़े नूं नापाक कपड़े नूं जो मूत पलीती कपड़ हुए हो गया सी, दे साबून लईए उतों। ऐसे तरह ही तरिया मत पापा के सन ओ तोपै नावै के रंग। कई पाउडर कई साबण ऐसे भी होंदे ने मैल भी ला देंदे ने रंगत भी दे जांदे। नाम ऐसा साबण है, नाम ऐसा पाउडर है, नाम ऐसा मैल कटण वाला ते गुणा वाली चीज है कि मनुख दे मन दी मैल भी ला देंदा है ते रंग भी चाड़ देंदा है। इसलिए तू परमेश्वर दा जस सुनिया कर, अथवा गाव्या कर, अथवा धारण करया कर ते अमलाया कर। गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोल तो सब पाप लह जाए। तो मन बच कर्म करके कई बार पाप हो जाते ने, ते वड़े ही कीमती शीशा किसे मंगवाया होवे, भावे बिलजिम तो मंगवाया होवे, इंश्योर करा के बड़ी एहतियात नाल वड मुले बंगले दिनुकर आबनूसी फर्नीचर दे नाल आत वड मुले टेबल ते लाया होवे, उस दिन इस नूं घरों बाहर जाना पै जाए ते हैरान होगा शीशे च मुंह नहीं दिसदा सोहना, साफ सुथरा चेहरा दस्तार दाड़ा नहीं दिस रहा, कारण की है? ते फिर पता लगा पे शीशे ते मैल पै गई सी। ऐन इसे तरह कई बारी जे मैल ना भी होवे, एक होर भी कारण हुंदा है, शीशे चेहरा नहीं दिसदा, शीशा सामने मुहर्रक होवे, मुतहर्रक होवे, हिलदा जुलदा होवे, इन्हां दोवां हालतां विच चेहरा नहीं दिसदा, शीशा बड़ मुल्ला ही हुंदा। एक होर भी सियाणे ने हालत कढ़ी है, जे शीशा साफ भी होवे
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਕਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਧਰ ਮੁਨਕਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਇਆ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਾਈਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬੰਬਈ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਵੇਖੇ, ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਉਧਰ ਮੁਨਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਲ ਬਖਸ਼ੇਪ ਆਵਰਣ। ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਲ ਬਖਸ਼ੇਪ ਤੇ ਆਵਰਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਲ ਆਲੂਦਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਆਪਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾਲੀਏ।

किस बारक भूख कैसी नवनिध नाम निधान के तेरे मन पहुंचे सोलैसी तू मेरा पिता तू है मेरा माता।

जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, जिसका जिसका

बारक मुख मांगे सो देन, नानक

ऐसे जीने लो, ऐसे जीवन लो। सतगुरु ने त्रिगाकार करके आखे, जेड़ा जीवन नाम तो विहून है, जेड़ा जीवन नाम तो बिना है।

0: क्यों डिठो कड़ियाल एन दोसा मारिए हम दोसा दा क्या हाल।
1: फरीद साहब भगति करन गए वापस आए कि वेख देने बहुत वड्डा सारा एक दरवाजा जिस दरवाजे अंदर एक कड़ियाल टंगी कड़ियाल नूं वेख रहे सन एक संतरी आया हाथ विच लकड़ दा हथौड़ा फड़े उस हथौड़े दे नाल इस कड़ियाल ते चोटा मारनिया शुरू कीती। जद कड़ियाल नूं चोटा वजिया फरीद साहब ने अपने मन नूं संबोधन कीता ते सानूं कल भी उपदेश जीवां नूं उपदेश दे रहे कहिंदे ने फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल एन दोषा मारिए हम दोषां दा क्या। हे फरीद एन दोषा इसने कोई दोष भी नहीं कीता न दोषा ही मारिया जा रहा असी ता दोषी हां साडे दोषां दा की हाल होवेगा असी कितना वड्डा दोष कर रहे हां मनुखी जामा भी धारण कीता संसार ते आए भी लेकिन बखूने जा रहे हैं किस तो नाम तो बिना। फरीद साहब बड़ा सुंदर ख्याल।

हे इंसान, ख्याल कर अन्न देवता, पानी देवता, बसंतर देवता लून पनवा पाया किरत ता होवा पाक पवित्र। इतने देवते जिन्हां नूं तू ग्रहण कीता भोजन दी शकल विच, लेकिन भोजन छक के तू प्रभु दा शुकराना नहीं कीता, उदा धन्नवाद नहीं कीता, उदा शुक्रिया अदा नहीं कीता, की कीता? कोठी जाई सके है किस तेहो लगा दो, कोठी जगा जाए कश्मीर दिता। हे इंसान, नाम तो विहूना जेड़ा मनुख है, ए थुका कहने नहीं उदे विष्टे मैले ते नहीं। जित मुख नाम ना उच्चरे, विन नामे ना सुखाए, नानक एवै जानिए तित मुख थुका पाए। ए थुका उसते मुंह ते पईया जिन्हें नाम नु विसारे, जेड़ा नाम तो विहूना इंसान है। साहब कह रहे हैं।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने। पर गल कमाल दिए मंगल वाले बहुतात विच हन, जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहिब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

मंगली है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

ना जानू साहिबा मैनू जो की तोई तेरा किता मैं ना जानू साहिबा मैनू जो की तोई निर्गुण हारे।

अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे।